0: ये NHK World Japan की उर्दू सर्विस है। हमारी ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज़ पर सुनी जा सकती हैं।
1: जी सामिन, और अब जापानी बोलचाल के प्रोग्राम के हवाले से एक बहुत ही खुसूसी ऐलान।
0: जी दोस्तों, हम आइए जापानी बोलें का क्विज सिलसिला आज से शुरू कर रहे हैं जापानी ज़बानदानी, जिसमें जापानी ज़बान का एक नामुकम्मल जुमला पेश किया जाएगा।
2: इस नामुकम्मल जुमले में खाली छोड़ी गई जगह को आपने पुर करना है और मज़कूरा मिसिंग लफ्ज़ लिखकर हमें रवाना करना है।
1: नामुकम्मल जुमले की तस्वीर हमारे होम पेज पर दीवान खाना के पेज पर मेज़बानों की तस्वीर वाले हिस्से में पोस्ट की जाएगी।
2: दीवान खाना के पेज तक रसाई का तरीका बताते चलें कि आपने खोलना है हमारा पेज nhk.jp/urdu, फिर शोज ऑन डिमांड के उन्वान पर जाके दीवान खाना के सफ़े तक पहुँच कर 24 मई के प्रोग्राम की वेबसाइट खोलिए।
0: इस पेज पर क्विज के जुमले वाली तस्वीर नजर आएगी, इसको देखकर अपना जवाब सोचना है और हमें रवाना कर देना है, और दुरुस्त जवाब वाले सामीन यानी क्विज में शरीक होने वाले सामे का नाम हम दीवान खाना में नशर करेंगे।
1: तो 24 मई के शो के सफ़े पर 10 सवाल हैं। हारूसा हाउसु वा डैश डैश डैश,
0: इस इबारत में मौजूद खाली जगह पुर करनी है, क्योंकि नामुकम्मल इबारत यानी के सवाल में सिर्फ हारूसान हाउस वा डैश डैश डैश मौजूद है, लिहाजा बाकी अल्फाज आपने अपने जवाब के तौर पर लिखने हैं।
2: इसके लिए हम आपको इशारा देंगे कि यह हमारे इबारत हमारे होम पेज पर जापानी बोलचाल के प्रोग्राम के कौन से सबक नंबर में है, ताकि आप वहां जाएं, दुरुस्त जवाब तलाश करें। और अभी हमने जो जुमला बताया हारूसा हाउस वा देश देश देश देश, इसका जवाब हमारे होम पेज nhk.jp/urdu पर जापानी बोलचाल के सबक नंबर 1 में मौजूद है।
1: आइए जापानी बोलने के असबाक के मुतल्लिक का सफ़े तक रसाई हासिल करके इस सबक में जवाब तलाश करें।
2: जी सामिन, आप अपना जवाब जापान

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का उनके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें वायला कवानो का कोनिचिवा नमस्कार।
1: दोस्तों को रोहिणी रमन का भी प्यार भरा नमस्कार और कोनिचिवा। लेकर हाजिर हैं आपके पत्रों के जवाब और आओ पकाएं जापानी खाना।
0: रोहिणी जी, देखिए मई महीने में खाने पीने की कितनी सारी चीजों के दाम बढ़ गए हैं ना?
1: हाँ, चाहे 50-60 येन की वृद्धि ही क्यों न हो, लेकिन खरीदारी के बाद पूरा बिल देखते ही काफी झटका लगता है।
0: हाँ, आजकल हमने बाहर खाना काफी कम कर दिया है और जितना हो सकता है घर पर ही बनाते हैं।
1: ये बात तो सही कहा आपने। मुझे पहले से तुलना करने में दिक्कत होती है क्योंकि जापान में इतना समय नहीं हुआ है अभी, लेकिन हाँ, रेस्टोरेंट का बिल पहले से ज्यादा आने तो लग गया है।
0: हाँ, ये तो है। तो घर पर रहते हुए जायकेदार खाने का आनंद लेने की हमने पूरी व्यवस्था कर दी है, यानी आओ पकाएं जापानी खाना के अंतर्गत आज बनाना सीखेंगे एक नई विधि। तो पहले जल्दी से पत्रों की ओर चला जाए।
1: नेकी और पूछ। तो सबसे पहले है सुरेश अग्रवाल जी का पत्र, केसिंगा उड़ीसा से।
0: अच्छा,
1: लिखते हैं, 10 मई के चेरी के देश से कार्यक्रम में श्रोताओं के पत्रों को पर्याप्त समय दिया जाना अत्यंत अच्छा लगा। विशेष रूप से श्रोता बहन अंजुला जी का अपनी ही आवाज में प्रतिक्रिया सुनना एक नया और सुखद अनुभव रहा। यद्यपि पूर्व में भी कुछ श्रोता ऐसा कर चुके हैं, फिर भी इस प्रस्तुति ने कार्यक्रम में एक अलग आत्मीयता जोड़ दी। कार्यक्रम में आपने उल्लेख किया कि भारत में लोग अपने केश बेचकर भी आय अर्जित करते हैं तथा यहाँ से बालों का निर्यात भी किया जाता है। इस विषय ने मेरी जिज्ञासा बढ़ा दी। मैंने आपकी वेबसाइट पर संबंधित क्लिप खोजने का प्रयास किया, किंतु वह कहीं दिखाई नहीं पड़ी। कृपया मार्गदर्शन करें कि उक्त सामग्री वेबसाइट पर किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है।
0: सुरेश जी, हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब आपकी मधुर आवाज में हमें कार्यक्रम में आपकी बेबाक राय सुनने का अवसर मिलेगा। तो आप भी जरूर भेजें और बाकी श्रोताओं से भी यही अनुरोध है। और जैसा आपने कहा कि ऑडियो क्लिप से कार्यक्रम में एक नई जान तो आ जाती है।
1: बालों से कमाई करने वाली क्लिप के बारे में आपका प्रश्न है और खेद है आप इसे नहीं ढूंढ पाई। आप अगर समाचारों पर क्लिक करेंगे तो उसके नीचे भी विशेष क्लिप का हिस्सा है। वहां पर यह वीडियो जिसका शीर्षक है झड़ते बाल भी करें कमाई आपको दिख जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इसे देख पाएंगे।
0: जी हाँ। और अब देखिए, ये अगला पत्र है एसबी शर्मा जी का और ये लिखते हैं, एनएचके हिंदी सेवा के समाचार से पता चला कि ईरान और अमरीका समझौते के करीब पहुंच गए हैं। पूरी दुनिया इस खुशखबरी के इंतजार में है। उम्मीद करते हैं कि यह समझौता जल्द होगा। भारत सहित दुनिया गैस और पेट्रोल ईंधन की कमी से परेशान है। अमेरिका द्वारा उत्पन्न ये संघर्ष पूरी दुनिया को झेलना पड़ रहा है। ईरान ने भी इस युद्ध में अपने 20 से ज्यादा शीर्ष नेताओं को खोया है और अब समझौते के लिए विवश हुआ है। उम्मीद है कि यह समझौता जल्द होगा और ईरान में अमन होगा तथा भारत जैसे देशों में महंगाई और विकास पटरी पर आएगी।
1: एसबी शर्मा जी, इतने समय बाद लिखने के लिए धन्यवाद। वाकई अमेरिका ईरान संघर्ष ने काफी देशों को मुश्किल में डाल दिया है। आपने हाल की एक खबर सुनी होगी कि जापान में छपाई की स्याही की किल्लत के बीच एक जापानी कंपनी ने अपने कुछ स्नैक्स के पैकेट पर रंगों से छपाई न करने का फैसला लिया है। पैकेट को काला सफेद ही रखने का फैसला ले लिया है।
0: बताइए, किसे मालूम था कि इस संघर्ष से रंगों पेंट्स की भी किल्लत शुरू हो जाएगी। तो शर्मा जी, हम क्या आपसे पूरी दुनिया सहमत है कि संघर्ष तुरंत समाप्त होना चाहिए ताकि हम अपनी पुरानी जीवन शैली में लौट सकें। शांति ही तरक्की की कुंजी है। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में हारने के बाद संकल्प लिया कि युद्ध कभी नहीं करेगा और यहाँ जापान के लोग भी शांति की ही हमेशा वकालत करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद झेला है कि युद्ध कभी किसी के विकास में सहायक नहीं हो सकता।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगला पत्र है पथिक जैन जी का। लिखते हैं, पंकज त्रिपाठी जी के साथ भेंटवार्ता सुनाने के लिए बहुत बहुत आभार। इतने सरल और सहज व्यक्तित्व को सुनकर बहुत अच्छा लगा। पंकज जी द्वारा तीसरे भाग में खिचड़ी की उपयोगिता पर दी गई टिप्पणी बहुत अच्छी लगी।
0: अच्छा,
1: एक कलाकार के लिए उसका शरीर ही एक उपकरण है और उसके पाचन को सही रखने के लिए खिचड़ी उपयोगी होती है। मेरा एक सुझाव है कि ऐसी भेंट वार्ताओं को डाउनलोड कर सकने का कोई लिंक साझा करें और कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया के लिए वॉइस रिकॉर्डिंग की भी सुविधा हो।
0: पथिक जी, कार्यक्रम सुनने और सराहने के लिए आभार। व्यक्तित्व के धनी पंकज जी की बातों में जो फलसफा था वो सभी को पसंद आया होगा, ऐसी आशा है।
1: डाउनलोड करने की सुविधा तो संभव नहीं है, अभी हम इस भेंट वार्ता का वीडियो तैयार करने में जुटे हैं जो लंबे समय तक देखा जा सकेगा, तो कृपया थोड़ा इंतजार करें। वॉइस मैसेज की सुविधा तो उपलब्ध है, आप जरूर एक बार कोशिश करें भेजने की।
0: जी हाँ। और अब देखिए, अगला पत्र है राम कुमार नीरज जी का। लिखते हैं, 10 मई के चेरी के देश से की प्रस्तुति सचमुच मन को छू लेने वाली थी। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रोताओं द्वारा भेजे गए पत्रों को जिस आत्मीयता और अपनेपन के साथ प्रस्तुत किया गया वो सुनकर ऐसा लगा मानो दूर बैठे लोग एक ही परिवार के सदस्य हों। आज के तेज और भागदौड़ भरे समय में जहां लोगों के पास एक दूसरे की बातें सुनने तक का समय कम होता जा रहा है, वहां चेरी के देश से जैसा कार्यक्रम श्रोताओं के दिलों को जोड़ने का एक सुंदर माध्यम बन गया है। कार्यक्रम में पढ़े गए पत्रों के माध्यम से श्रोताओं की संवेदनाएं, उनके विचार, उनकी खुशियां और उनके अनुभव सुनने को मिले। सबसे अच्छी बात ये लगी कि हर पत्र में अपनेपन की एक सच्ची भावना थी। आपकी प्रस्तुति शैली भी अत्यंत मधुर और प्रभावशाली थी। कार्यक्रम की इंद्रधनुषी प्रस्तुति ने वातावरण को और भी जीवंत बना दिया। कभी संगीत की मधुरता, कभी श्रोताओं की भावनाएं और कभी जापान तथा भारत के सांस्कृतिक संबंधों की झलक, सब कुछ मिलकर कार्यक्रम को यादगार बना रहे थे। साथ ही लिखते हैं, मैं स्वयं भी रेडियो के माध्यम से लंबे समय से जुड़ा रहा हूं और समाज, पर्यावरण तथा मानवीय विषयों पर अपने विचार साझा करता रहता हूं। हाल में मैंने हिरोशिमा और पोखरण की पृष्ठभूमि पर आधारित एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मानवता और शांति का संदेश देने का प्रयास किया गया है। इसलिए जापान और भारत के बीच सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने वाले आपके कार्यक्रम मेरे लिए विशेष महत्व रखते हैं।
1: रामकुमार नीरज जी, आपका पत्र प्रेम और स्नेह से सराबोर है। यह मंच आपका और सभी श्रोताओं का है, तो जाहिर है इसमें आप लोगों को ही महत्व दिया जाएगा। हमारी कोशिश रहती है सभी पत्र दिल से पढ़ें और श्रोताओं के मन में जो चल रहा है उसे भांपने का प्रयास करें। अगर इस कार्यक्रम में हम थोड़ा सा भी खरा उतरते हैं तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे।
0: हिरोशिमा और पोखरण की पृष्ठभूमि में आपकी रिपोर्ट अत्यंत दिलचस्प प्रतीत होती है, तो अगली बार जरूर विस्तार से बताएं कि इसकी विषय वस्तु क्या है। और अब वक्त हो रहा है हमारी फ्रीक्वेंसी की जानकारी देने का, तो नोट कर लीजिए फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
1: स्वागत है एक बार फिर से चेरी के देश से कार्यक्रम में।
0: रोहिणी जी, जैसा हमने कार्यक्रम के शुरू में बात की कि आज एक जायकेदार रेसिपी साझा करेंगे, तो चलते हैं आओ पकाएं जापानी खाना की ओर।
1: हाँ, आज बनाना सिखा रहे हैं सोयाबीन बर्गर।

0: ये है NHK वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा। आप सभी को अभिजीत दाते की ओर से नमस्कार।
1: सभी सुनने वालों को प्रखर मिश्र की ओर से भी प्यार भरा नमस्कार।
0: आओ पकाएं जापानी खाना कार्यक्रम में आपका स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र ने 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया है, इसलिए आज हम दलहन का उपयोग करके एक व्यंजन बनाना सिखाएंगे। आज का व्यंजन है सोयाबीन बर्गर, जिसमें हम मांस के स्थान पर सोयाबीन का उपयोग कर रहे हैं, जिसे खेत का मांस भी कहा जाता है।
1: और यह व्यंजन सिखाने के लिए आज भी हमारे साथ हैं पाक कला विशेषज्ञ अकीको वातानाबे।
2: कोनिच्वा, वातानाबे अकीको देस। क्यों शोकाई सुरु मामे नो हैमबर्गर वा मामे तो
0: ये कह रही हैं नमस्कार, मैं हूँ अकीको वातानाबे। आज हम सोयाबीन बर्गर बना रहे हैं जो बहुत पौष्टिक होते हैं। इसमें हम सोयाबीन के साथ उमामी यानी जायका बढ़ाने के लिए अच्छी तरह भुने हुए प्याज का इस्तेमाल करेंगे। साथ में सजाएंगे मौसमी सब्जियां और ऊपर से डालेंगे एक खास सॉस, जिससे यह व्यंजन देखने में सुंदर और खाने में मजेदार बनेगा।
1: तो सबसे पहले आपको बता देते हैं 4 लोगों के लिए यह व्यंजन बनाने की सामग्री। बर्गर बनाने के लिए आपको चाहिए 300 ग्राम उबले हुए सोयाबीन, 100 ग्राम प्याज, 10 ग्राम मक्खन, 1 अंडा, आधा छोटा चम्मच नमक, थोड़ी मिर्च और 1 बड़ा चम्मच मैदा।
0: साथ में परोसने वाली सब्जियों के लिए ले लीजिए 100 ग्राम शिमेजी मशरूम, 4 ताजे शीताके मशरूम, 1 टुकड़ा या लगभग 120 ग्राम कमल ककड़ी और 200 ग्राम दाइकॉन मूली।
1: और नींबू वाला सोय सॉस बनाने के लिए तैयार रखिए आधा नींबू, 1 बड़ा चम्मच सोय सॉस और आधा छोटा चम्मच चीनी। इसके अलावा बर्गर की टिक्कियों और सब्जियों को पकाने के लिए थोड़ा तेल भी चाहिए।
0: तो चलिए अब व्यंजन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्याज को महीन काटना है, इसके लिए उसे 3 मिलीमीटर के छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में काट लीजिए।
1: प्याज को काट लेने के बाद उसे भूनना है, तो एक फ्राइंग पैन गर्म कीजिए और उसमें मक्खन डालिए। आंच मध्यम रखिए, जब मक्खन लगभग आधा पिघल जाए तब प्याज डाल दीजिए।
0: ये कह रही हैं प्याज भूनते समय उसे पूरे पैन में फैला लीजिए। मक्खन से भूनने पर प्याज के अपने स्वाद में निखार आ जाता है और व्यंजन का उमामी यानी असली जायका बढ़ जाता है।
1: भूनते समय बीच बीच में प्याज के टुकड़ों को थोड़ा हिला लीजिए, वे धीरे धीरे पारदर्शी होने लगेंगे।
0: जब प्याज हल्का भूरा हो जाए तब उसे गैस से उतार लीजिए और एक थाली में फैला कर ठंडा होने दीजिए।
1: अब बारी है बर्गर की टिक्कियां बनाने की। आज हम डिब्बा बंद सोयाबीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर डिब्बा बंद सोयाबीन उपलब्ध ना हो तो आप सूखे सोयाबीन को उबाल सकते हैं।
0: इसके लिए 125 ग्राम सूखे सोयाबीन के दानों को ढेर सारे पानी में रात भर भिगो कर रखिए और फूले हुए दानों को सुबह एक पतीले में डालकर 3 से 4 घंटों तक हल्की आंच पर पकाइए। नर्म होने के बाद आपके पास 300 ग्राम उबले सोयाबीन के दाने तैयार हो जाएंगे।
1: अब उबले हुए सोयाबीन को मसलना है, लेकिन उससे पहले कुछ दाने अलग हटा लीजिए। इनसे हम बर्गर को सजाएंगे। हम 8 टिक्कियां बनाने वाले हैं, तो हर टिक्की के लिए 3 यानी कुल मिलाकर सोयाबीन के 24 दाने अलग रख लीजिए और बाकियों को मसल लीजिए।
0: उन्हें पूरी तरह मसलने की जरूरत नहीं है, कुछ टुकड़े बड़े रह सकते हैं।
1: मसलने के बाद नमक और मिर्च डालिए और लकड़ी के चम्मच से ही अच्छी तरह मिला लीजिए। इसके बाद 1 अंडा फेंटिए और उसे भी मसले हुए दानों के साथ मिला दीजिए।
0: सारा अंडा एक साथ मिलाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए पहले सिर्फ 1/3 हिस्सा ही डालिए। जब वह अच्छी तरह मिल जाए तब दूसरा हिस्सा डालिए। अगर आप सारा अंडा एक साथ मिलाने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा।
1: अंडा मिला लेने के बाद मैदा डालना है। मैदा मिलाने से टिक्कियां बनाना आसान हो जाएगा। और उसके बाद डाल दीजिए ठंडा भुना हुआ प्याज।
0: सब कुछ मिलाने के बाद टिक्कियां बनाने का मिश्रण तैयार है।
1: आज हम छोटी टिक्कियां बनाने वाले हैं, इसलिए मिश्रण को 8 बराबर हिस्सों में बांट लीजिए और 1 सेंटीमीटर मोटाई की गोलाकार टिक्कियां तैयार कर लीजिए।
0: अब हम अलग रखे सोयाबीन के दानों से टिक्कियों को सजाएंगे। उन्हें इस तरह टिक्की में लगाइए कि वे उभरे हुए न रहें। आप सोयाबीन के दानों को आंखों की तरह लगाकर टिक्कियों पर चेहरे बना सकते हैं या उन्हें फूल की आकृति में लगा सकते हैं।
1: आज हमने फूल बनाए हैं। अब इन टिक्कियों को एक थाली पर रख लीजिए और साथ में परोसने वाली सब्जियां तैयार कर दीजिए।
0: आप आज हम शरद में मिलने वाली सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास हैं दो तरह के मशरूम और कमल ककड़ी। शिमेजी मशरूम का सख्त निचला हिस्सा काट दीजिए और मशरूमों को तीन हिस्सों में बांट लीजिए। शीता के मशरूमों का भी सख्त निचला भाग काट दीजिए और मशरूमों को आधा काट लीजिए। कमल ककड़ी का छिलका उतारिए और मोटे टुकड़े काट लीजिए।
1: कमल ककड़ी के टुकड़े लगभग 7 मिलीमीटर मोटे होने चाहिए, इससे वे आसानी से पकेंगे।
0: इसके बाद दाइकोन यानी बड़ी मूली का छिलका उतार कर उसे कद्दूकस कर लीजिए।
1: ऐसा करते समय ध्यान रखिए कि मूली के रेशे टूट जाने चाहिए।
0: कसी हुई मूली में बहुत सारा पानी होता है, इसलिए उसे एक छलनी में डालकर हल्के से निथार लीजिए, नहीं तो टिक्कियों में नमी आ जाएगी। मूली को दबाकर पानी मत निकालिएगा, उसे छलनी में रखा रहने दीजिए ताकि अतिरिक्त पानी अपने आप झर जाए।
1: बर्गर को जापानी स्वाद देने के लिए आज हम कद्दूकस की हुई मूली और नींबू वाले सोया सॉस का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सॉस बनाने के लिए नींबू के रस में सोया सॉस मिला लीजिए और उसके बाद नींबू का खट्टापन और सोया सॉस के नमकीन स्वाद को हल्का करने के लिए थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए। फिर इन्हें अच्छी तरह मिलाइए।
0: अब पकाना शुरू करते हैं। पहले सब्जियों की बारी।
1: फ्राइंग पैन को गर्म कीजिए और उसमें एक बड़ा चम्मच तेल डालिए। जब तेल पूरे पैन में फैल जाए तब उसे मशरूम और कमल ककड़ी के टुकड़े के साथ बिछा दीजिए। इन्हें हिलाइए नहीं, कुछ देर पकने दीजिए। सारी सब्जियां डालने के बाद पैन पर ढक्कन लगा दीजिए और भाप में भून लीजिए।
0: लगभग 1 मिनट बाद ढक्कन हटाकर सब्जियों को पलट लीजिए और ढक्कन फिर से लगाकर 1 और मिनट के लिए भाप में भूनिए।
1: अब बारी है सोयाबीन की टिक्कियों की। फ्राइंग पैन को एक साफ कागज से पोंछ लीजिए और फिर से तेल डालिए। जब पैन गर्म हो जाए तब उसमें टिक्कियां रख दीजिए।
0: टिक्कियां नर्म है इसलिए हिलाने पर आसानी से टूट सकती हैं। उन्हें हथेली पर रखकर थोड़ा ठीक कर लीजिए और फिर सोयाबीन के दानों की सजावट वाली सतह नीचे की तरफ रखते हुए पैन में रखकर पकाइए।
1: 8 टिक्कियां पैन में रखने के बाद आंच कम कर दीजिए और निचली सतह हल्की भूरी होने तक पकाइए। टिक्कियां नर्म है इसलिए जब तक वे थोड़ी सख्त ना हो जाए उन्हें हिलाइएगा नहीं, उसके बाद उन्हें पलट लीजिए।
0: टिक्कियों को हल्की आंच पर पकाइए ताकि वे अंदर से कच्ची ना रहें। फ्राइंग पैन पर ढक्कन लगा दीजिए और 2 मिनट तक पकाइए।
1: जब टिक्कियों में मौजूद अंडा पूरी तरह पक जाएगा तब टिक्कियां तैयार हो जाएंगी, उसके बाद उन्हें थाली में सजा सकते हैं।
0: तो एक थाली में 2 टिक्कियां साथ साथ इस तरह रखिए कि एक टिक्की दूसरी पर थोड़ी चढ़ी हुई हो। इस तरह रखने पर वे देखने में स्वादिष्ट लगती हैं।
1: इसके बाद टिक्कियों के आसपास मशरूम और कमल ककड़ी सजा दीजिए।
2: हांबर्ग निवा मिज़ुके ओ कित्ते ओइता दाइकोन ओ सोएमासु।
0: फिर कद्दूकस की हुई मूली को इस तरह रखिए कि उसका कुछ हिस्सा एक टिक्की के ऊपर रहे और खाने से पहले मूली पर नींबू वाला सोया सॉस डालकर परोसिए।
1: शरद में खाने के लिए बढ़िया ताजगी भरे जापानी स्वाद वाले सोयाबीन बर्गर तैयार हैं।
0: दोस्तों, आज हमने जो बर्गर बनाना सिखाया इसे आप तरह तरह के सॉस और सब्जियों के साथ खा सकते हैं। सोयाबीन की जगह आप दलहन की किसी दूसरी किस्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये व्यंजन जरूर बनाकर देखिएगा।
3: वाइला जी, यह व्यंजन तो बनाने में आसान लग रहा है, मैं जरूर इसमें हाथ आजमाना चाहूंगी।
4: हाँ, जरूर बनाएं और हमें भी खिलाएं, और दोस्तों आप भी बनाकर देखें। बहरहाल अब समय हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, फिर होगी मुलाकात। तब तक अनुमति दें वाइला कवानों को
3: और रोहिणी रमन को
4: सायोनारा, नमस्कार।